स्वर गोपाल मिश्रा का था। अब सुनते हैं चंदू आत्मा और सहकारियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना।

चंदो आत्मा और सहकारियों के स्वर में ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना।

वाणी जयराम के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। इसी के साथ भक्ति संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।

ಸನಿರಿದನಿ ಪಗರಿದನಿ ಪಗರಿ ಸರಿ ವಂದೇ ನಿಶಮಂ ಗರಿಸನಿ ಪಗರಿ ಸರಿ ಗಬಗ.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत प्रस्तुत है राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन. आज के हमारे कलाकार हैं मोहन सिंह खांगूड़ा. आपके साथ तबले

0: संगत कर रहे हैं सत्यव्रत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर रथिंद्रनाथ चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं राग बिलास खानी तोड़ी में खयाल गायन। कलाकार हैं मोहन सिंह खांगुड़ा।
1: हेलो एंड गुड मॉर्निंग, दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल। लिसन टू अ खयाल इन द राग बिलास खानी तोड़ी। Our artist this morning, Mohan Singh Khangura. The accompanying artists are Shottobrota Chattopadhyay on the tabla and Rathindranath Chakraborty on the harmonium. Listen then to a khayal in rag Bilas Khani Todi. Our artist is Mohan Singh Khangura.

0: आज के इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे राग बिलास खानी तोड़ी में ख्याल गायन। कलाकार थी मोहन सिंह खांगूड़ा। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सत्यव्रत चट्टोपाध्याय और हारमोनियम पर रथिंद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं तबला वादन। तीन ताल प्रस्तुत करेंगे अशोक कुमार मोइत्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं प्रशांत सिन्हा। तो आइए सुनते हैं तबले पर तीन ताल, कलाकार हैं अशोक कुमार मोइत्रा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल इन राग बिलास खानी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज मोहन सिंह खांगूड़ा। Accompanying the artist was Shottobrot Chattopadhyay on the tabla and Rothindranath Chakraborty on the harmonium. This is Ragam, 24/7 on DTH. Anytime Indian music. Continuing our morning concert, now listen to a Hindustani tabla recital by our next artist, Ashok Kumar Moitro. Tal, Teen Tal. The accompanying artist is Prashant Singho on the harmonium. Listen then to a tabla solo in Teen Tal. Our artist is Ashok Kumar Moitro.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुन रहे थे तबला वादन, ताल तीन ताल। कलाकार थे अशोक कुमार मोइत्रा। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे प्रशांत सिन्हा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की प्रस्तुति थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Hindustani tabla recital in Teen Taal, performed by Ashok Kumar Moitro. Accompanying the artist was Prashant Singho on the harmonium. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for the Ragam channel. Anytime, Indian music, 24/7.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है पंडित सुनील कांत गुप्ता का बजाया बांसुरी पर राग अहीर भैरव. मध्यलय की यह रचना एक ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज चौधरी. दिस इज रागम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. वी आर प्रेजेंटिंग फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित सुनील कांत गुप्ता. फर्स्ट ही प्रेजेंटिंग राग अहीर भैरव. एकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी.
2: आरंभ में बांसुरी पर प्रस्तुत है राग अहीर भैरव, जिसमें पहले आलाप उसके बाद मध्यलय एक ताल में गत प्रस्तुत करूंगा. लीजिए, प्रस्तुत है.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित सुनील कांत गुप्ता का बजाया बांसुरी पर राग अहिर भैरव। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया बांसुरी पर राग कालिंगड़ा। यह बंदिश तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज चौधरी। दिस इज रागम 24/7 डीटीएच एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। यू आर लिसनिंग फ्लूट रिसाइटल बाई पंडित सुनील कांत गुप्ता ऑन राग अहिर भैरव। नाउ ही इज प्रेजेंटिंग राग कालिंगड़ा द कम्पोजिशन सेट इन तीन ताल। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी।
1: अब मैं प्रस्तुत करूंगा राग कालिंगड़ा में एक गत। यह रचना मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है। लीजिए सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर राग कलिंगड़ा। वादक कलाकार थे पंडित सुनील कांत गुप्ता। अब आप सुनिए इन्हीं का बजाया बांसुरी पर राग बिहाग। तबले पर संगत कर रहे हैं श्री पंकज चौधरी। After Raag Kalingada, now Pandit Sunil Kant Gupta is presenting Raag Bihag, accompanying him on tabla, Shri Pankaj Chaudhary.
1: Bansuri par prastut hai, Raag Bihag mein vilambit ek taal mein nibaddh gat, tat paschat madhyalay teen taal mein ek rachna. Lijiye suniye.

0: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर राग बिहाग। कलाकार थे पंडित सुनील कांत गुप्ता। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया भाटियाली लोकधुन। तबले पर है श्री पंकज चौधरी। आफ्टर राग बिहाग पंडित सुनील कांत गुप्ता इज प्रेजेंटिंग भाटियाली धुन। अकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला श्री पंकज चौधरी।
1: लीजिए अब सुनिए बांसुरी पर बांग्ला लोकधुन भाटियाली।

0: पंडित सुनील कांत गुप्ता का बांसुरी वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंकज चौधरी।
1: अभी आप सुन रहे थे बांसुरी पर भाटियाली लोकधुन। कलाकार थे पंडित सुनील कांत गुप्ता। ये है रागम 24 घंटे साधुदीन DTH अनवरत भारतीय संगीत। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से। यू आर लिसनिंग भाटियाली फोक धुन ऑन फ्लूट बाय पंडित सुनील कांत गुप्ता। दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाई ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राकेश प्रसन्ना का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग. विलंबित गत मत्त ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है केदारनाथ ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sarod recital by Rakesh Prasanna. He begins by playing Rag Shuddh Sarang. The Vilambit Gat is set to Matt Tal and the Drut Gat is set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Kedar Nath.

0: अभी आप राकेश प्रसन्ना का सरोद पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी केदारनाथ ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिस्निंग टू राग शुद्ध सारंग ऑन द सरोद परफॉर्म बाय राकेश प्रसन्ना। द अकंपनीमेंट ऑन तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय केदारनाथ। दिस प्रोग्राम वॉज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

के प्रारंभ में सुनते हैं वाईएस मिराशिबुआ का गाया राग दरबारी कन्नड़ा। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल है सुहागन चोल। द्रुत ख्याल त्रिताल में निबद्ध है, बोल है मधुकर भर लादे। आइए सुनते हैं वाईएस मिराशिबुआ का गाया राग दरबारी कन्नड़ा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम

来

Oh, I don't know, let on, go, let on, but I didn't do that long.

अभी आपने वायस मीरा शिबुआ का गाया दरबारी कानाड़ा सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग शुद्ध कल्याण। विलंबित ख्याल तीन ताल में निभत है, बोल है अली मोहे मान। सात संगत है सारंगी पर एक आदर, तबले पर जी एन पर्वतकर। आइए सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग शुद्ध कल्याण।

अभी आपने पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग शुद्ध कल्याण सुना। सात संगत की थी सारंगी पर एकादन, तबले पर जीएन पर्वतकर ने। रागम 24/7 डीटीएच के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 डीटीएच चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है काफी ठुमरी, तदुपरांत माज खंबाज दादरा. कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं अमिताभ भो भट्टाचार्य. तो लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम काफी ठुमरी, तदुपरांत माज खंबाज दादरा. कलाकार हैं अनिरुद्ध नाथ.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Kafi Tumri followed by a Maj Khamaj Dadra. Our artist is Aniruddh Nath. Accompanying our artist on the tabla is Timir Roy Chaudhuri and on the harmonium is Amitava Bhattacharya. Listen now to Kafi Tumri followed by Maj Khamaj Dadra. Our artist, Aniruddh Nath.

0: अनिरुद्ध नाथ आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तिमिर राय चौधरी और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे अमिताभ भू भट्टाचार्य। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग किरवाणी पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुबीर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष चौधरी। तो लीजिए प्रस्तुत है राग किरवाणी पर संतूर वादन। कलाकार हैं सुबीर मुखोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू काफी ठुमरी फॉलोड बाय मच खमाज दादरा। Our artist was Aniruddha Nath. Accompanying our artist on the tabla was Thimir Roy Chowdhury, and on the harmonium was Amitava Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a santoor recital. Listen to a santoor recital in the rag Kirvani. Our artist is Shubir Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Debashish Chowdhury. Listen now to the santoor in the rag Kirvani. Our artist Shubir Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग किरवाणी पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सुबीर मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष चौधरी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Santoor recital in the Raag Kirvani. Our artist was Shubir Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla was Debashish Chaudhuri. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam 24/7 on DTH, Anytime Indian Music.

ಭಗವಂತ ಪೋಷಿ ಓರಿ

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं विदुषी जरीन शर्मा. राग है बसंत मुखारी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ झाला तत्पश्चात दो गतें. विलंबित गत रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में. संगत कलाकार हैं तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग बसंत मुखारी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार है विदुषी जरीन शर्मा। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे विदुषी जरीन शर्मा से राग जोग में आलाप जोड़ और छाला, तत्पश्चात विलंबित और द्रुत गत। विलंबित गत झपताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा, यू विल लिसन द राग जोग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थी विदुषी जरीन शर्मा। संगत कलाकार थे तबले पर पंडित रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय विदुषी जरीन शर्मा। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय पंडित रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सबसे पहले प्रस्तुत है पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा। आप सबसे पहले राग गौर सारंग में मध्य लय में ख्याल बजाएंगे जो कि तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मुन्ने खां।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा पर राग गौर सारंग। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया विचित्र वीणा पर राग श्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मुन्ने खां। आप मध्य लय बंदिश बजाएंगे जो कि तीन ताल पर निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे पंडित गोपाल कृष्ण द्वारा बजाया विचित्र वीणा पर राग श्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुन्ने खां। आइए अब प्रस्तुत है अरविंद पारिक का बजाया सितार वादन। आप सबसे पहले राग हंस ध्वनि प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद।

अभी आप सुन रहे थे पंडित अरविंद पारिक का बजाया सितार पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मोहम्मद अहमद। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया सितार पर राग गुंजी कौस। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अहमद।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे अरविंद पारिक का बजाया सितार पर राग गुंजी कौस। आइए अब सुनते हैं माबूद हुसैन का क्लार्नेट वादन। आप सबसे पहले भैरवी में ठुमरी प्रस्तुत करेंगे, तत्पश्चात भैरवी में दादरा प्रस्तुत करेंगे, इसके बाद पीलू में ठुमरी, पहाड़ी धुन तथा पंजाबी धुन प्रस्तुत करेंगे। आइए सुनते हैं माबूद हुसैन का क्लार्नेट वादन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी. बोल हैं कौन गली गयो श्याम. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Savita Devi. She is accompanied by Akhtar Hasan on tabla, Kamal Ahmed on sarangi, and Ballu Khan on harmonium. First listen to Thumri in Rag Mishra Khamaj. The words are, Kaun Gali Gayosha?

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी सुन रहे थे। और लीजिए अब सुनिए दादरा, बोल हैं बिकल जिया होई रे। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र खमाज बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर बिकल जिया होई रे।

0: अभी आप विदुषी सविता देवी का गाया दादरा सुन रहे थे और लीजिए अब सुनिए कजरी। बोल हैं तरसल जियारा हमार। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू आर लिसनिंग टू दादरा बाय विदुषी सविता देवी। नाउ लिसन टू कजरी। द वर्ड्स आर तरसल जियारा हमार। शी इज अकंपनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी and Ballu Khan on harmonium.

0: अभी आपने विदुषी सविता देवी की गाई कजरी सुनी, और लीजिए अब सुनिए झूला। बोल हैं सिया संग झूले बगिया में राम ललना। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने।
1: यू वर लिसनिंग टू कजरी, नाउ लिसन टू झूला। द वर्ड्स आर सिया संग झूले बगिया में राम ललना।

0: अभी आप सुन रहे थे सविता देवी की आवाज में ये झूला। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर कमाल अहमद ने और हारमोनियम पर बल्लू खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू झूला बाय विदुषी सविता देवी। शी वॉज अकम्पनीड बाय अख्तर हसन ऑन तबला, कमाल अहमद ऑन सारंगी एंड बल्लू खान ऑन हारमोनियम। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना कुमुदिनी पेडनेकर के स्वर में।

समर्थ रामदास की भक्ति रचना आप सुन रहे थे कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में। भक्ति संगीत कार्यक्रम में आगे की भक्ति रचना है संजीव अभ्यंकर के स्वर में।

संत जनाबाई की भक्ति रचना आप सुन रहे थे, जिसे गाया था मालती पांडे ने। अब हम सुनाने जा रहे हैं शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शरद जांभेकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। भक्ति संगीत कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना है संजीवनी जोशी के स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना मधुसूदन कानेटकर के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल।